मिडी वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 9 तारीख व दिन है गुरुवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत मुनपमद कौशिक, श्री लोपसंग तोप्तेन, तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अच्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गियारी और शिखा डिका, और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज के हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की।

0: ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में

0: मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे सुरेश वाडकर की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
1: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले,
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे किंगलिंग किंगलंग, जोशन लोंगपी, कोचुंग लोंगरी, लिसा मोसंग और मुंतंग मोसंग की आवाज में चंदांग सा आधुनिक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किंगलिंग किंगलंग चोशम लोंगपी कोचुंग लोंगरी लीसा मोसंग और मुंगतंग मोसंग की आवाज में चंद तांगसा आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे वोंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट नर्बू ड्रमा और ट्रेजरर श्रीमती तंजिन हमू से भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित महिला मंच कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में जो अतिथि उपस्थित है हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि इन्होंने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आज से पहले भी कई बार हिस्सा ले चुके हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित हो या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संबंधित हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तवंग क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंग अमा के प्रेसिडेंट श्रीमती नर्बू ड्रमा जी के बारे में। तो नर्बू ड्रमा जी, एक बार फिर आपका हमारे आकाशवाणी तवंग के स्टूडियो में मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी।
2: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने पहले भी नर्बू ड्रमा जी के साथ इनके जो होंग अमा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तवंग क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, इस बारे में आपके समक्ष चर्चा किए थे, पर तब की बात थोड़ी सी अलग थी। अब जो है इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनमें बहुत सारे बदलाव इन्होंने लाए हैं, तो आज हम उसी से संबंधित इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी पीछे हम और एक बार चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो होंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसकी स्थापना कब हुई थी, इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में फिलहाल आपके साथ कितने सदस्य जुड़े हुए हैं।
2: जी, होंग अमा जो है हम लोग 8 मेंबर है इसमें, और ये 17 नवंबर 2020 में इसका स्थापना हुआ था, और 8 अमा तब भी था, 8 अमा आज भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है।

0: जी, तो लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, है ना? तो
1: जी.
0: इन 5 सालों में आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ओंग अमा, जो कि मैंने पहले कहा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अब तक के आपकी जो उपलब्धियां हैं इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन 5 सालों में आपने किस तरह के काम किए हैं.
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप जब ये इसका स्थापना हुआ था तब हमें बताया गया कि इसमें आपको 3 महीने तक काम करके दिखाना होगा, तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसे बताया था. तो ये हम 8 आमा जब इसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने पहले 3 महीने तो हम लोगों ने डट के काम किया, जिसमें जंगल में धूप को काटने से लेके उसको सुखाने से लेके उसको पैकेजिंग करने से लेके बिक्री करने तक के लेके बोमडिला तक जाने तक का जर्नी जो है काफी मेहनत भरी थी. और जंगल में जाके चाय पत्ती जो नमक चाय में बहुत स्वादिष्ट है उसको भी हम लोग ने जंगल से कलेक्ट किया, धोया, पैकेजिंग किया, उसको भी बिक्री किया. इसके अलावा हम लोग खपसे को बहुत, मेरा सपना ही था कि जैसे हम लोगों का बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, ऐसे ही मोम्पा का जो रेसिपी खपसे है
0: जी,
1: वो भी सबके घर पहुंचे, ऐसा सोच के मैंने इसी को आगे बढ़ाने के लिए खपसे को शुरुआत किया. तो शुरुआत में तो तकलीफ तो काफी थी, क्योंकि हम लोगों का बजट जो है, हम लोग हफ्ते में लगभग 30 रुपए ही हम लोग जमा करते हैं.
0: अच्छा.
1: हफ्ते में तो 4 हफ्ता में 120 जमा होता है. 8 आमा के हर आमा जो है 120 रुपए उसमें कंपलसरी सेविंग के रूप में हम लोग जमा करते हैं. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे करते हम लोग के पास में कुछ 10,000 के करीब हम लोग कमाई हुआ. उसको हम लोग ने फिर अमालों को लोन दिया और लोन दे के उसमें से कुछ इंटरेस्ट आया. ऐसे करके इसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जो है, हम जो अभी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमने सब अमा अगर फंक्शन का
0: जी जी
1: ये धूप का व्यापार करेंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, ऐसा एक डर मन में लगा. तो इसको छोड़ करके, और चाय पत्ती तो वैसे भी पतझड़ के टाइम में वो गिर जाती हैं तो उसको उठाने में तो उसमें कोई नुकसान नहीं, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं, तो उसको जारी रखा. और धूप को हमने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन खपसे को बहुत ज्यादा पैमाने पर बनाना शुरू किया. और लोसर के टाइम में उसको एक लोगों से डिमांड लेके, लोगों को जिसका घर में सुविधा नहीं होता है खपसे बनने से, तो काफी साजो सामान चाहिए, मेहनत चाहिए और आदमी चाहिए. तो कोई कोई जितना भी गवर्नमेंट सर्विस करने वाला उनके पास में समय कम होता है, तो उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके हमने लोसर में काफी जो है इसके ऊपर में काम किया था. बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिला. तो अभी जो है हम लोगों का फोकस जो है सुंदर पैकेजिंग हो और अच्छा पैकेजिंग हो और लोगों तक साफ सफाई के साथ में लोगों के घर घर पहुंचे, इसके लिए कोशिश करती हूँ. और इसी कोशिश में हम लोगों को सही में कहा जाए तो मेहनत है, लेकिन पैसा कमाने का तभी मजा है जब मेहनत उसके साथ जुड़ा हुआ हो. और मेरा सपना है ईटानगर से लेकर दिल्ली तक इसका स्वाद पहुंचे.
0: जी जी, जैसे कि आपने कहा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ओंग अमा ने अब तक खपसे के कई सारे व्यापारी कर रखे हैं और आपको फायदे भी हुए हैं, तो फायदे होने भी चाहिए, क्योंकि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करते हुए अपनी हाथों से खपसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक चाय पत्ती की व्यापारी करी है. और इस बीच मुझे ना आपकी एक बात बहुत ही खास लगी, जहाँ पर आपने कहा कि आप पहले धूप या संग की व्यापारी करते थे और अब आपने ये सोचते हुए उसमें रोक लगाई कि एक दिन ऐसा लोग करते रहेंगे तो जंगल खत्म होने लगेंगे. तो ये बात जो है आपने बिल्कुल सही सोचा, बहुत ही बेहतरीन सोच इसमें आपने लाए हैं, क्योंकि अगर जब आप धूप के लिए जंगल जाओगे तो आपने एक अच्छी खासी पेड़ की डाली काटनी है, तो उसमें ना कहीं से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकते हैं. और तो और सरकार हमें हर बार ये शिक्षा देती है कि हमें जितना ज्यादा हो सके वृक्षारोपण करनी चाहिए, है ना. और आपके खपसे की जो पैकेजिंग है वो हमें बहुत ही उसमें खासियत नजर आए. एक बात आपसे जानना चाहूंगी, जब आप खाने पीने की चीजें बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो साफ सुथरे की बात आते हैं, जो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, और एक होते हैं खाने की योग्य कब तक रहते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से खोज करते हैं?
1: सबसे पहले तो ये देखा हम लोग ने, पहले तो एक सिंपल व्हाइट प्लास्टिक में हम लोग खपसे को पैकेजिंग भी मोमबत्ती में जला करके उसका जो सीलिंग होता था वो भी एक अच्छा सा नहीं होता था, तो वो एक दिखने में भी थोड़ा लोग आकर्षित नहीं होते थे, लोग बहुत साधारण सी लगती थी. तो इसके ऊपर में हमने कहा कि इसके ऊपर में काम करना जरूरी है. अगर हमारा प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुंचाना है तो पैकेजिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है. तब हमने, और

0: लोगों को इसमें पूरा मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चीज डाला गया है, किस क्वांटिटी में डाला गया है, इसे खाने से क्या फायदा होता है और इसको कैसे खाया जा सकता है और कितना समय तक खाया जा सकता है, कब बनाया है। जब तक लेवलिंग की तरफ में नहीं जाएंगे और पैकेजिंग एक आकर्षक नहीं होगा तो लोग इसको खरीदना भी पसंद नहीं करते। तो इसके ऊपर में हमने काम किया। तो अभी हम लोग ने लगभग अभी हम लोगों का एक साल हो रहा है जो हमने इस पैकेजिंग के ऊपर में ध्यान दिया। और साफ सफाई के मामले में तो हम लोग बहुत ही ध्यान देते हैं। जहाँ बनता है वो साफ सुथरा होना है सबसे पहले, जिस बर्तन में बनता है वो साफ सुथरा होना है और जो बना रहे हैं वो सब साफ सुथरा होना है। एप्रन के साथ में, ग्लव्स के साथ में, टोपी के साथ में, मास्क के साथ में हम लोग बहुत ही इस सफाई को ध्यान करके बनाते हैं। और हमारे अभी प्रोडक्ट को हम कई लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छा है बोल के लोग पसंद। और खपसे का जो रेसिपी है उसमें जो भी मात्रा, चीनी का मात्रा हो, नमक का मात्रा हो, तेल का मात्रा हो, वो सब भी एक जो मापदंड है वो सही जा रहा है, इसलिए खपसे बहुत टेस्टी हो रहा है, क्रिस्पी हो रहा है और क्रंची हो रहा है, तो लोग पसंद कर रहा है, इसका मुझे बहुत खुशी है। मैं इतना चीज हमारे वोंग आमा जो है ये चीज कर पा रहा है बोल के ये एक खुशी मेरे मन में है। जब भी मैं इसके लिए प्लान बनाती हूँ तो मेरे सब आमा जो है जिनको फुर्सत नहीं मिलता उनको छोड़ के हम लोग बराबर उस खपसे को बनाने के लिए, बाजार तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: और ये काफी जो है आपका बाजार का बिस्कुट से तो काफी स्वादिष्ट है, उससे काफी सस्ता है, पूरा ख्याल करके बनाते हैं क्योंकि लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, यही सोच के हम लोग का प्रोडक्ट को काफी लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छा लगता है।
1: और साथ साथ जब हम किसी भी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ किसी सभी को होते हैं, तो आपको भी शायद हुए होंगे जब शुरुआत की आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता आपको अब तक मिली है?
0: सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा है कि आप जब सेल्फ ग्रुप को फॉर्म करेंगे उसी समय 3 महीने के बाद गवर्नमेंट आपको 30,000 डाल के देता है, तो ये बहुत बड़ा हेल्प है।
1: बिल्कुल।
0: लोग आमा लोगों को जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल इसके बारे में जानकारी नहीं रहता, उसको एक बचत करने का सिखाने का तरीका है गवर्नमेंट का। बचत इस तरह से किया जा सकता है और थोड़े थोड़े डाल के भी बूंद बूंद से सागर बनता है बोल के एक कहावत है।
1: बिल्कुल।
0: तो वही चीज जो है गवर्नमेंट आमा लोग में एक आदत डाल रहा है कि आपको बचत कैसे करना है। और गवर्नमेंट का इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में पूरा ध्यान है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं और महिलाएं घर में अपना बच्चा देखती हैं, खेती का काम करते हैं, घर का सारा काम करते हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ उनका समय बचता है तो उनको कुछ अगर हेल्प दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाएं अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बल्कि गवर्नमेंट का एक विश्वास है, मोदी सरकार का एक विश्वास है कि महिलाओं को अगर हम हेल्प करें, महिलाओं को अगर हम आर्थिक मदद दें तो ये देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहारा बनेगा।
1: जी, जी, जी।
0: ये एक आशा। अभी देखिए अरुण श्री ऋण कह के गवर्नमेंट 1,00,000 रुपए आपको खाते में डाल के देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप बैंक से लोन ले सकते हैं, वो एक सिक्योरिटी मनी जैसे गवर्नमेंट जमा करके देते हैं, आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, तो कितना बड़ा सुविधा है। उसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बोल के अभी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट 1,50,000, किसी को 1,20,000 दे रहा है, लेकिन अब नया जो प्रोड्यूसर ग्रुप बन रहा है उन लोगों को 1,50,000 दे रहा है। तो इस तरह से गाड़ी का आप ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंदर में आपको 6,50,000 गवर्नमेंट यूं ही आपको बिना इंटरेस्ट का हेल्प कर रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा हेल्प है। अगर हम कोई घर में कोई गाड़ी चलाने जानना हो रहा है, आमा सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो आप गाड़ी लोन लेके बिजनेस कर सकता है। तो कई तरह के बिजनेस करना चाहेंगे तो आप फार्मिंग, नॉन फार्मिंग करके, अगर आपके पास में खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में आप लोन लेके आप अच्छा अच्छा बीज लेके आप खेती कर सकता है और उससे उत्पादन करके आप कमा सकता है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट हर तरह से कोशिश कर रहा है। तो महिलाएं एक बार आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो देश बहुत आगे जाएगा, ऐसा बहुत बड़ा सोच है,
1: क्योंकि सरकार के इससे बड़ी मदद आपने जिस तरह से कहा क्या ही हो सकते है, क्योंकि एक अकेली महिला अगर 1,00,000 रुपए कमाने निकल पड़े तो कितनी मेहनत उसमें लग सकते हैं ना। वही सरकार अब जब आपको बिना किसी इतने बड़े जो इंटरेस्ट के आपको दे रहे हैं तो लेनी चाहिए जिस तरह से आपने कहा, और वापस भुगतान करने के लिए भी जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो तो आपके पास

0: शब्द बहुत सारे जरिया है,
1: जरिया है
0: जी। और नवरिमा जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में बुक कीपिंग नाम का एक कार्य होते हैं, वो आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें कौन करते हैं? और आपके पास अब तो मुझे यकीन हो गया है कि बहुत सारे जमा पूंजी होंगे, तो इसके उपयोग आप किस तरह से करना चाहते हैं, करते हैं?
1: ऐसा है, बुक कीपिंग हफ्ता हफ्ता में मीटिंग होता है, मीटिंग में सभी अमा को अपना कंपल्सरी सेविंग को रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, और वो एक लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो महीने भर साल भर चलते रहेंगे आपका जितना साल, उसमें जो अमाउंट जमा होगा वो तो अलग ही है। बुक कीपिंग में इतना ट्रांसपेरेंसी है कि एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होगा। तीन बुक में, एक माइनस बुक में मेंशन होता है, एक बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन वाले में मेंटेन होता है, अगर लोन लेता है तो मेंटेन होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर पैसा आ गया, आपने जमा किया, तो एक पैसा भी इधर उधर जाने का कहीं भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हिसाब हर हफ्ता हिसाब होता है, हर हफ्ता उसको हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, जमा करते हैं, या हर हफ्ता भी ना कर पाए तो हम लोग महीने में करते हैं। इस तरह से जो भी आमदनी होता है वो बिल्कुल उसमें लिखा जाता है, कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, वो सब सारा चीज जो है कैलकुलेट होता है। और सभी अमा को जब पैसा का मामला होता है सब में एक संदेह रहता है, तो इसमें अगर पैसे के मामले में सबके मन में ये संदेह खत्म करे तो ये ग्रुप बहुत अच्छा से बैठता है, ग्रुप कभी टूटने वाला नहीं होता है। तो ये विश्वास जो है बुक कीपर का बनता है कि बुक में जो भी लिखा जाता है, जो भी कार्यक्रम बनता है, सही सही से लोगों को मालूम होना चाहिए, रुपया कितना है मालूम होना चाहिए, बैंक में कितना है वो मालूम होना चाहिए। तो अभी हम लोगों का जो वोंग अमा का, तो हम लोग जो है हमारे मेंबर के अंदर में तो किसी को डाउट नहीं है कि इसमें एक पैसा भी इधर उधर होता है, या कुछ भी काम करते हैं हम लोग ग्रुप में, कुछ भी काम करते हैं तो एक पैसा भी इधर से उधर होता होगा, ऐसा सब में एक विश्वास है कि हिसाब किताब बहुत बढ़िया होता है, एक पैसा भी गड़बड़ नहीं होता है बोल के, ऐसा विश्वास सभी में है। हम भी, कोई दूसरा करता है तो उसको भी हम पर विश्वास है और हम पर भी लोगों का विश्वास है। तो ये विश्वास बन जाने के बाद में, बुक कीपर का ये विश्वास बन जाने के बाद, कोई भी काम को हम लोग शुरू करने के लिए कहें तो सब लोग राजी होता है और राजी होगा। और ये चीज जो है बुक कीपर ही कर सकता है, बुक कीपर को ही सब लोगों को समझाना होता है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना बचा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी अगर ग्रुप में रहता है तो ग्रुप टूटने का सवाल नहीं है, और जो भी काम कदम उठाएगा उसमें सक्सेस होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग जब शुरू में, तो हम लोगों के पास में आमदनी क्या था, कुछ भी नहीं था। हमने संग बिक्री किया, थोड़ा चायपत्ती बिक्री किया, थोड़ा खपसे बिक्री किया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग, जब हमारे पास में 10,000 आया तो हमने 10,000 अमालों को लोन दिया, 20,000 आया तो 20,000 अमालों को जो जिसको जरूरत है उसको लोन दिया, ऐसे करते करते अब भी हम लोग का जो हम इस पोजिशन में है कि हम लोग हम अपने ग्रुप से हम लोग 2,00,000 तक हम अपने अमा को हेल्प कर सकते हैं जिसको जरूरत पड़े। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप में रह के ये संभव है, अकेला ये कभी भी संभव नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहने से ये संभव है। तो इतना हेल्प हम, अगर अचानक हमको जरूरत पड़े किसी से, कहीं तबीयत खराब हो गया या कभी जरूरत पड़ गया, अचानक जरूरत पड़ गया, जरूरत तो सभी को पड़ता है, कभी कभी इस तरह का जब मुसीबत आता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है जो आपको हेल्प करेगा।
0: तब
1: तो
0: सेल्फ हेल्प ग्रुप की से ही मतलब है
1: उसका महत्व तभी मालूम होता है कि हम अगर किसी के पास मांगने जाओ तो शर्म लगता है, बोलने नहीं सकता है, किसी के पास मांगने जाओ तो दरवाजा तक पहुंच के झिझक रहता है, एक शर्मिंदा महसूस होता है, देगा कि नहीं देगा, देने से भी क्या बोल के देगा, इस तरह के बहुत सारा। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं है, जिसको आपको पूछा जाता है हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, किसको जरूरत है, जरूरतमंद वालों को ले सकता है एक पर्सन में, बहुत कम इंटरेस्ट में। तो अगर वो इंटरेस्ट लोन लेता है तो ग्रुप में भी एक दो पैसा इंटरेस्ट आ जाता है, तो बहुत ही हेल्पफुल है ये जो है। और हमको इतना बताते हुए खुशी है कि मेरा वोंग आमा जो है 2,00,000 तक हम अपना ग्रुप को लोन दे सकता है, ये अमाउंट एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है,
0: बहुत ही बड़ी।
1: गवर्नमेंट तो हमको हर समय तैयार है, बैंक में जाएंगे आपको सबसे पहले 4,00,000 या 5,00,000 आप बोलेंगे बिना कुछ किए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तुरंत आपको MCP बना के देने के बाद में आप एक उसको क्या किस में खर्चा करेंगे वो एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट

0: बना के देने के बाद गवर्नमेंट आपको कोई भी बैंक आपको देने के लिए तैयार है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहने से तो ये फायदा है।
1: जी, जी,
0: अगर आपको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है आपको महीने भर दौड़ते रहिए आपको वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये एक सुविधा बैंक वाला हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते दे रहे हैं तो इसका भी फायदा उठाना चाहिए। हम लोगों का ये मानना है कि लोन में नहीं डूबेंगे तो लोन से डूबने वाला नहीं, लोन लेके आपको काम करना है, काम से पैसा कमाना है, ये एक सोच रख के करना है। तो काम करने का भी एक मजा है, एक चिंता रहता है कि हमने लोन लिया है इसको जैसे भी हमको लौटाना है, ये एक चिंता रहता है। तो उस चिंता में हम काम कर जाते हैं, हम काम कर जाते हैं, कुछ एक अच्छा काम कर जाते हैं तो उसमें देखते देखते में हमारा इनकम हो जाता है, लोन भी क्लियर हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा आम लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प है।
1: जी जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने में किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे
0: नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं।
1: जी तो नवजर्मा जी, हमारे आज के ये कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, बल्कि मेरे पास सवाल तो आपको करने के लिए और भी कई सारे हैं, पर कुछ अन्य कार्यक्रम में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए आपने जो हमारे आकाशवाणी तवांग में आपने कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तावंग के वोंग आमा सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट नर्वो ड्रामा और ट्रेजरर श्रीमती तेंजिन हामो से भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थी दर्जी ड्रामा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम महिला मंच यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म राब्ता से। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य के, वसंगीत प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म जबरिया जोरी से गीत यासिर देसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाज में गीत करते रश्मि विराग व संगीत था तनिष्क बागची का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द फिल्म केदारनाथ से। अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

अभी आपने सुना फिल्म सूर्यवंशी से गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में, गीत करते रश्मि विराग व संगीता जाम मेट का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म ये जवानी है दीवानी से तोची रैना, रेखा भारद्वाज, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म केसरी से गीत अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में, गीत को शब्द व संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में फिल्म माय नेम इज खान से। शब्द रचना है निरंजन अयंगर के व संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म मौसम से। शाहिद मालिया की आवाज में गीतकार हैं इरशाद कामिल व संगीत है प्रीतम का।

फिल्म मौसम किसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं में प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कलाकार अली अकबर खान से सरोद वादन। राग है मंच खमाज। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में अन्य 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में आई अचानक बाढ़ में लापता हुए चौथे व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ। इसी के साथ लापता 5 लोगों में से 4 का पता चला, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू स्थित लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंसे, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। विधायक वांगलम सावी ने क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉ. मोहेश चाय ने मियाओ खगाम ब्लॉक के कैटरक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रेम तबा को कोलंबो स्थित सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 से सम्मानित किया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आज तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट

0: एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी वैश्विक के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी का क्रियान्वयन किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना भी की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ भी किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति की गई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बेनीज ने भी इस भविष्य उन्मुखी साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: And critical minerals.
2: गत 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में बादल फटने से आए अचानक बाढ़ में लापता हुए चौथे व्यक्ति का शव प्राप्त किया गया है, जिसकी पहचान 46 वर्षीय ताओ ताओ आंजनी का तौर पर की गई है। इसके साथ ही लापता 5 लोगों में से 4 का पता चल गया है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तेजू के लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंस गए। इनमें से एक श्रमिक स्वयं बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि शेष 5 को राज्य आपदा मोचन बल, एसटीआरएफ, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल तेजू के जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 26 वर्षीय राहुल कुमार और 33 वर्षीय विपिन कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। खोंसा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक वांगलाम साविन ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानिसुल्लू और संपर्क अधिकारियों के साथ मिलकर कई पान्योर जिले का दौरा करते हुए अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का जमीन स्तर पर विस्तार से जायजा लिया। दौरे के दौरान टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित समुदायों की बातों का सीधा मूल्यांकन किया जा सके। इस बीच अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने फिर से दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटा रह जाएगा और हर एक गाँव को सामान्य धन राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉ. मोहेश शाय ने मियाओ में आयोजित एक समारोह में मियाओ खगाम ब्लॉक को मोतियाबिंद अंधत्वा लंबित मामलों से पूर्णतः मुक्त यानी कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विधायक ने बताया है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम के तहत ये उपलब्धि हासिल करने वाला मियाओ खगाम देश का पहला ब्लॉक बन गया है। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम ताबा को कोलंबो स्थित सार्क सांस्कृतिक केंद्र द्वारा साझा विरासत की व्याख्या सार्क क्षेत्र में संग्रहालयों के अंतर सांस्कृतिक आख्यान विषय पर एक शोध परियोजना के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघर्ष सहयोग सार्क अनुसंधान अनुदान 2026

0: सत्ताईस से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर टाबा के प्रस्ताव का शीर्षक था When the vitrine silenced the forest, decolonizing tribal heritage communication in the museums of the Eastern Himalayan Sark Corridor. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वैक्स साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित साक्षरता मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एटीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत की हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूती प्रदान करेगा। कृषि यांत्रिकी उप मिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों के 9404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। यह मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मिशनरी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit, to secure peace and stability across the Indo-Pacific. The leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalized an annual defence ministers dialogue and launched a unified maritime security collaboration roadmap. Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. Further, Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor were also operationalized. Later, the Prime Minister will also interact with the Indian diaspora at a community event in Melbourne. Vice President C.P. Radhakrishnan today launched a landmark national initiative for the sustainable utilization of India's high seas fishery resources at the Orissa University of Agriculture and Technology in Bhubaneswar, calling the blue economy a transformative engine of national prosperity. The vice president urged the youth to embrace modern technology-driven fisheries and maritime professions as a cornerstone of Viksit Bharat. Meeting of the BRICS Transport Working Group has begun in Nagpur today as part of third BRICS Transport Ministers meeting under BRICS 2026 chairship of India. Addressing media persons after the working group meeting, Union Transport Secretary V. Umashankar said that senior officials deliberated on the main issues of circularity, mobility, urban infrastructure, sustainable development. Similarly, best practices in the transport sector and transportation issues were discussed. The body of the fourth victim who went missing in the flash floods triggered by a cloudburst in Kripanyur district in Arunachal Pradesh on June 24 has been recovered and identified as Tao Anjina, 46-year-old. With the recovery of Tao Anjina's body, four of the five missing persons have now been traced and once one still remains.

0: ये बना देवगा डोंकिर मालबोर नी आइकोनिक मालबोर स्टेडियम छोखा चेटे कमे यानोंबर क्यागर सिंजिन शुनबा कुशब सीबी राधा कृष्णन सी नदे उड़ीसा कक गेसा भुवनेश्वर कक थुरछे निन सिंगलेख थ्रम लबडा ठीका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज हाई सी फिशरी रिसोर्स न्याक थोका सोंद्रेल यर्गे निन जेगोथिका छिपग्युर नाया कलप सुंशे नामबुर चोवो ग्यागर विकसित भारत निया यर्गे थोका छेजी चुगु नांगदर गेयों निंगाक मिसे लेंगे छंगमासे थुगुरशेया छाले नांगोसो हाजांग गेथेम युमरुनिया सुनामबुर ngade urisa kak singur goimi kushaf prakash das si nesul nangdanga deshutiga gyagar kekhapsi uichungya cheji chugu nangtar gyagar sinjin shenba kushaf cb radha krishnan si unje nangu banang miksek gyagar mise lhangye banasha keben tim riyuk thoka nau yumrungiya nesul sungnani ग्यागर गेयोंग निंगाक लो नुपशोकाक नामचर योंजो देशुक्तिगा गेयोंग निंगा ख्याबु नंबर गेयोंग उई नमशी लेखुंग कुक डॉक्टर नरेश कुमार सी सिंग्युर कुमिग्युए नेसु सुंगुगा ग्यागर थाये ग्याचो जांशोकाक निन राजस्थान हरियाणा निन पंजाब युम्बुर जैसे दिल्ली शोका निन आदे उत्तर प्रदेश निन आदे उत्तराखंड शोका प्लांग खासी दिग सूर्जे नामचर देशा मुनु थेम छोकदोंग नोम्बुरिया नांगुनिन उई नमशी लेखुंग आई एम डी सी नेसु सुनांगुंबुर आदे उत्तराखंड काक जोंडल माप का प्लांग खासी दिग सुने नामचर देशा मुनु थेम छोकदोंग नोनिन दुनुई नये नाम थेम छोमाक निये नेसुल सुनानी नेसुल नहु नादर आदे केरेलाम कक सनी निन चोंडल माप थीगा देशुक्तर नामचर न्यूशो गुक नेसुल नी ब्रिक्स केखा पानंक ट्रांसपोर्ट टुलम गुक छाले नंखन ट्रांसपोर्ट लेदुन लुंचिन लेंगे बाना प्रेगा देशुक्तर टोंखिर नागपुर का ग्यागर गेखप सी उयुसुंगया छोंदि तगेबदि उजुनाव नंबर थांगिना उद्देबका देशुक नेसुल के थेंशो शुसु बाना दुस थांगिना दाव शुजे मिक्सेक लिरिन से नासा देशुज मिक्सेक लिरिमा दुरब खलिथिका ngadang chuenin rikshung chit nyam madasu kaya sungtop nin jingjong yakosu kor सेराजे तसंग क्यब्जे खिरमुचे किशे टेशिसेरसी देश कुंजिना तवंग हल्लादें रेगाक कलवांबो छोखंगा निंगा शुंजब लंगे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तवंग गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवंग निन सेराजे आदिशा लबडक गेगन निन लोपटुबु नाशा कलप नौ सनासा
1: Chikta ozo tamshe yajuk so ngadang timu mayimbe la dingdik tuzi udin duram yishu zajik niya ongo eche chik dingdik sheyen lopchon yago ni kamye chik ngadang timu mayimbe chodan rikshon niyago kayas ngadang e zingyong yako so manyamo ya da yako so udin di ni dujin chik oyas tamshe yajuk chik na ne tati yas itmayado ngadang kachayi na sema ongo ne kayo layo si ganji raso ich damshe yake oya ganji yinye chik tiya na nga bangmigyo layo rejim shindere ich chat manu samdil zo cheshe da nga da da ozo ge tengsho ni siha koso ich nga na sema nao di chik shekyuk di utende nao da zo cheshe ozo nga da tinye da nga da ozo dawang rang chik labda ka soya soya utuk labdu buzo tengsho ya nao gne chik ya labdu buzo shunda na ya utende pepne चिक ओजो जान चुगलिंग ता किंदिम नबा यम बोल लब्दु उतना फेमने ता इतना खांगबो चि लब्दु बुजन यंग बोल चि ता देश नगो गदा तावन

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरूखा में पहले सुनी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनिगोनपा के अनी शिपेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमित्यांग की तीसरी कक्षा की छात्रा तेंदन नॉर्जन से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा चिट्ठी। आज शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत बेनी दयाल और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म युवराज से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, फिल्म गजनी से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, फिल्म फाइटर से बेनी दयाल और शिल्पा राव विशाल शेखर की आवाज में गीत, फिल्म बैंग बैंग से बेनी दयाल और हर्षदीप कौर की आवाज में गीत, फिल्म ये जवानी है दीवानी से बेनी दयाल और शेफाली अलवर्स की आवाज में गीत, और फिल्म एक मैं और एक तू से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, फिल्म 72 आवर्स से सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चटर्जी की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत।

8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष

2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे चंद मणिपुरी आधुनिक गीतों का। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तावांग की 5th सेमेस्टर की छात्रा चुमी लामू से डर पर काबू पाना और आत्मविश्वासी बनना विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाज में गीत फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से दर्शन रावल और रोचक कोहली की आवाज में गीत फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत और फिल्म जब हैरी मेट सेजल से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म कबीर सिंह से तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की आवाज में गीत, फिल्म कपूर एंड सन्स स्यारको की आवाज में गीत, फिल्म गोलमाल अगेंस्ट से अरमान मलिक की आवाज में गीत, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत, फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म गुड न्यूज से रोचक कोहली, लव और अकाशा की आवाज में गीत, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाज में गीत और फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री थुपतेन टाशी से। 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे क्यांगोंग अनिगोनपा के आनी यशिपेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की 4th कक्षा की छात्रा केजर सोमुकार्लो से एक कविता, कविता का शीर्षक होगा सेव अर्थ सेव फ्यूचर। 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत जुबिन गर्ग की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म गैंगस्टर, मनोरमा, बॉम्बे टू गो, बैंकॉक, दम मारो दम, लंदन ड्रीम्स और आशाएं से जुबिन गर्ग की आवाज में चंद गीत। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत फिल्म योद्धा से पी पराग की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

Amen.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ख्रिमितंग की तीसरी कक्षा की छात्रा तेंजिन नॉर्जन से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा चींटी।
1: नमस्ते, मेरा नाम तेंजिन नॉर्जन है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय ख्रिमितंग है। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा कविता का पाठ है चींटी और उसके कवि हैं प्रकाश मून। चींटी हर पल चलती जाती, चींटी श्रम का राग सुनाती। चींटी कड़ी धूप हो या हो वर्षा, ताना चुन कर लाती। चींटी सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती। चींटी छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती। चींटी नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती। चींटी काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती। चींटी मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती। चींटी धन्यवाद।
0: अभी आपने सुना गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ख्रिमितंग की तीसरी कक्षा की छात्रा तेंजिन नॉर्जन से एक कविता। कविता का शीर्षक था चींटी। इसी के साथ कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे बेनी दयाल और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म युवराज से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्द रचना है गुलजार की, वसंगीत है ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म बैंग बैंग सी गीत हर्षदीप कौर और बनी दयाल की आवाज में गीतकार थे अन्विता दत्त व संगीता विशाल शेखर का। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अन्य के अंतर्गत बनी दयाल और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द फिल्म ये जवानी है दीवानी से। बनी दयाल और शेफाली अलवर्स की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत बेनी दयाल और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म एक मैं और एक तू से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोता हूँ आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनिस ने विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इस दौरान आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए परमाणु सहयोग समझौते के तहत दीर्घकालिक

0: ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति के लिए अंतिम प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति मिलेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी तथा क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर को भी लागू किया गया। गत 24 जून को कईपानियोर जिले के में बादल फटने से आए अचानक बाढ़ में लापता हुए चौथे व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है, जिसकी पहचान 46 वर्षीय ताओ अंजनी के तौर पर की गई है। इसके साथ ही लापता 5 लोगों में से 4 का पता चल गया है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। कईपानियोर उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने अगले आदेश तक पितापुल पेट सिर खुंगलो मार्ग पर स्थित दोबा नदी पुल से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यात्रा परामर्श में कहा गया है कि पितापुल से लगभग 7 किलोमीटर दूर की दाबुरी नदी पुल संरचना रूप से असुरक्षित हो गई है और इसके कारण यात्रियों के लिए गंभीर दुर्घटना तथा जानमाल के नुकसान का खतरा उत्पन्न हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने आज ईस्ट सियांग और लोअर सियांग जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में टीम ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन किया। टीम ने स्थानीय निवासियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा प्रभावित किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉ. शिवराज ने आज पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल चैट खेती पटनायक से मुलाकात की। राज्यपाल ने कुलपति को राज्य की समृद्ध जैव विविधता, स्वदेशी परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने खेलों और स्वास्थ्य संबंधी पहलों पर भी विशेष बल देने का सुझाव दिया। तेजू स्थित लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंस गए। इनमें से एक श्रमिक स्वयं बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि शेष 5 को राज्य आपदा मोचन बल एसटीआरएफ, सेना, पुलिस एवं अन्य बचाव एजेंसी ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल तेजू स्थित जोनल जनरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां 26 वर्षीय राहुल कुमार और 33 वर्षीय विपिन कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा पोस्ट ऑफिस के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। खोंसा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक वांगलाम साविन ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग APSCW ईटानगर ने वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक महिला की उसके पति द्वारा की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से क्लबों, पब्स और बार्स के खुलने तथा बंद होने के समय का कड़ाई से नियमन और पालन सुनिश्चित करने की अपील की। आयोग का कहना है कि निर्धारित समय से अधिक देर तक खुले रहने के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। आयोग ने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रेम तबा को कोलंबो स्थित सार्क सांस्कृतिक केंद्र द्वारा साझा विरासत की व्याख्या सार्क क्षेत्र में संग्रहालय में अंतर सांस्कृतिक आख्यान विषय पर एक शोध परियोजना के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 के लिए सम्मानित किया गया है। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों तवांग और कुरुंग कुमे को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिवांग वैली, लोहित, नामसाई और तिरप के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the third India-Australia annual summit. In a massive economic breakthrough, final administrative arrangement under the nuclear...

फिल्म 72 आवर्स के गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म दो दिलों की दास्तां से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। शब्द रचना है अंजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, वसंगीत है जतिन ललित का। इस गीत की हमें फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरिदी झारखंड से। आप है मोहम्मद यासीन अंजान, सैमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म जहर से श्रेया घोषाल की आवाज में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक और रूप कुमार राठौड़ ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है हलीम आसाम से। आप हैं ज्योति सुरीन, जीवन सुरीन और पॉल सुरीन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चौदहवीं का चांद से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है शकील बारायूनी के, संगीत है रवि का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है पजोनिया जलौन उत्तर प्रदेश से आप है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। और नीमनाबाद हिंद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे बप्पी लहरी की आवाज में फिल्म डिस्को डांसर से। शब्द रचना है अनजान के व इस गीत को संगीत से संवारा है बप्पी लहरी ने। इस गीत की हमें फरमाइश किए है आसाम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यक्रम को आज की हेडलाइंस के साथ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हुआ। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होगा और 17 वर्षीय

0: अश्वथ एस पूरे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है और अब से एक से दो दिनों में फाइनल की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन खिलाड़ी खिताबी मुकाबले के लिए दांवपेच लगाते नजर आएंगे। आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहां कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अब से कुछ देर में मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी।
1: पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने इस विंबलडन में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के उप विजेता फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6, 6-0 से हराकर पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल हुए क्वार्टर फाइनल में फेरी ने कोबोली को 2 घंटे और 14 मिनट तक चले मुकाबले में मात दी। इसी के साथ आर्थर क्रोएशियाई दिग्गज गोरान इवानिसेविच की बराबरी करते हुए विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। एक तरफ फेरी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर ज्वेरेव ने भी अपने शानदार सीजन को जारी रखते हुए कुछ अहम उपलब्धियां हासिल की। 1.5 महीने पहले रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद ये जर्मन खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को 6-4, 6-4 और 6-2 से हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। अब उनका मुकाबला आर्थर फेरी से कल होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में यानिक सिनर का मुकाबला अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए खेल रहे नोवाक जोकोविच से होगा। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे प्राचीन ये खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम माना जाता है वर्ष का। सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष सेमीफाइनल के जो आज के मुकाबले खेले जा रहे हैं, दोनों मैच को लेके क्या ताजा अपडेट है आपके पास?
2: शक्ति, अभी कैरोलिना मुझोवा और कोको गॉफ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि बहुत ही एक कांटे की टक्कर पे चल रहा है, क्योंकि पहला सेट कैरोलिना ने 6-2 से जीता, उसके बाद कोको गॉफ ने अगला सेट 6-1 से जीता। अभी मुकाबला तीसरे सेट में 6-6 की बराबरी से चल रहा है और मैच पॉइंट पे गेम चल रहा है। इसके कुछ ही देर बाद मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा जो है वो आमने सामने नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में इस बार बहुत सारे उलटफेर होते नजर आए हैं। एलिना रायबकीना, अरेना सबालिंका और सेरेना विलियम्स, जिन्होंने इस साल वापसी करी विंबलडन में, वो भी बाहर हो गई हैं। तो इस बार हमको एक नया चेहरा विजेता के रूप में दिखाई देगा।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक नया चैंपियन मिलेगा। और जिस तरह आपने अभी मुकाबले के बारे में बताया, तीसरा सेट चल रहा है और एक बेहद कड़ा और करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार हमने विंबलडन में ऐसे मुकाबले देखे भी कि जो लोग सोचते थे कि ये 1 से 1.5 घंटे का खेल है, वो 5-5 घंटे तक के मुकाबले चले, तो ये आज का हाल है। और कल कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं विशेष मेंस सिंगल्स में?
2: मेंस सिंगल्स में जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो आर्थर फेरी और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन के विजेता हैं और आर्थर फेरी ने वाइल्ड कार्ड से एंट्री ली थी इस टूर्नामेंट में और बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक डी जोकोविच के बीच खेला जाएगा। जोकोविच 7 टाइटल पहले ही जीत चुके हैं, वो अपने 8वें टाइटल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रोजर फेडरर जो महान दिग्गज खिलाड़ी, वो 8 टाइटल जीत चुके हैं। तो अगर जोकोविच ये टाइटल जीत जाते हैं विंबलडन का, तो वो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
0: जी बिल्कुल, सर्बिया के इस खिलाड़ी की नजर जो है अपने आइडियल रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड पर भी होगी कि उसकी बराबरी की जाए। लेकिन अभी कह सकते हैं कि एक बेहद कड़ा सेमीफाइनल मुकाबला उनको खेलना है सिनर के साथ। और अब इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप की, जहां पर आज से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। आज देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं किन किन टीमों ने इस दौर में जगह बनाई।
3: फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच धीरे धीरे अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ रहा है। 48 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में अब सिर्फ 8 टीमें बची हैं। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। कुल 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं। इन 4 मैचों की विजेता टीम सेमीफाइनल

0: खेलेगी और फिर फाइनल के बाद विश्व फुटबॉल को नया विजेता मिलेगा। इस वर्ष कई उलटफेर भी देखने को मिले, जब नॉर्वे ने ब्राजील जैसी चैंपियन टीम को राउंड ऑफ 16 में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि पराग्वे ने चार बार की विजेता जर्मनी को राउंड ऑफ 32 के मैच में पेनल्टीज द्वारा हराकर उनका सफर समाप्त किया। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहले भी फीफा विश्व कप जीत चुकी हैं, जबकि मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम को अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। इनमें से कोई भी टीम अभी तक फाइनल में नहीं पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर उन टीमों का बढ़ता है जो पूर्व चैंपियन रही या फिर अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही टीमें कोई करिश्मा करती हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स केयर।
1: तो यूरोप का दबदबा एकदम एकतरफा देखने को मिलता है, 8 में से 6 टीमें हैं। विशेष हमारे साथ हैं। विशेष, आज का जो मुकाबला होना है मोरक्को और फ्रांस के बीच में, किसका पलड़ा कितना भारी है?
2: देखिए शक्ति, मैं बताना चाहूंगा कि फ्रांस जो है वो दो बार की विश्व विजेता रह चुकी है, फीफा विश्व कप उन्होंने दो बार जीता है। और वहीं मोरक्को की अगर बात करें तो उन्होंने इससे पहले सिर्फ एक सेमीफाइनल मुकाबला ही खेला है, तो ये उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। अगर इस विश्व कप की बात करें तो फ्रांस ने अपने पहले मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से, दूसरे में इराक को 3-0 से, फिर नॉर्वे को 4-1 से और स्वीडन को 3-0 से और पैराग्वे को 1-0 से हराया था। तो फ्रांस जो है वो डोमिनेट करते हुए खेल रही है इस बार। वहीं अगर मोरक्को की बात करें तो उन्होंने प्रभावित किया है अपने खेल से, जब उन्होंने ब्राजील के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, स्कॉटलैंड को हराया, हेती को हराया और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड्स को पेनल्टी में 3-2 से शिकस्त दी और कनाडा को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-0 से हराया। तो अभी बहुत ही ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन इसको जीतेगा। हालांकि फ्रांस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जो उनके मिडफील्डर हैं डियाज, उन्होंने अटैकिंग की जिम्मेदारी ली है इस बार और कहा है कि हम लोग किलियन एम्बापे को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और कप्तान अशरफ हकीमी जो हैं मोरक्को के, उन्होंने भी इस चीज पर दिखाया है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है कि टीम जो है तैयार है एक बड़े मुकाबले के लिए और ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला इंतजार कर रहा है ब्रिस्टल में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ अपना चौथा T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को अगर ये सीरीज ड्रॉ करानी है तो हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा।
3: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इस दौरे की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-0 से आगे है, जबकि श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीसरे T20 में इंग्लैंड से मिली 125 रनों की करारी हार के बाद टीम बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव कर सकती है। टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अच्छी लय में दिखे हैं, हालांकि युवा वैभव सूर्यवंशी दो मुकाबलों में अब तक अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे हैं। ऐसा ही हाल कप्तान श्रेयस अय्यर का भी रहा है, जो अब तक सीरीज में अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं ईशान किशन, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। शिवम दुबे कुछ हद तक लय में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। श्रृंखला में अब तक इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते ही नजर आए हैं। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें भी धार दिखाई नहीं दी है। बीच के ओवरों में कमजोर और महंगी गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को पिछले दोनों मुकाबलों में खामियाजा उठाना पड़ा है। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए घरेलू सरजमी पर इस सीरीज में अब तक सब कुछ सही घटता नजर आ रहा है। फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथिल, सैम करन और टॉम बेंटन भी लगातार बल्ले से रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए सरदर्द साबित हुए हैं, जबकि जोश टंग, आदिल रशीद और विल ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में भारत एक नई ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर अपना लक्ष्य सीरीज ड्रॉ कराने पर रखेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो श्रेयस अय्यर की मैन इन ब्लू चाहेगी कि आज इस मुकाबले को जीता जाए और जिस तरह की अब तक की सीरीज गई है कुछ अच्छी और मीठी यादें लेकर के इंग्लैंड से लौटा जाए। और ऐसी ही एक याद जुड़ने वाली है अक्षर पटेल के खाते में, यदि वो आज प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, उनको मौका मिलता है तो ये उनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। इस मौके पर अक्षर पटेल ने खुद भी कहा कि वे इस उपलब्धि के लिए बेहद उत्साहित हैं।
4: मैं फर्स्ट टाइम T20 खेल रहा था, तब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यार मैं 100 मैच खेलूंगा। बहुत ही स्पेशल टूर रहेगा ये इंग्लैंड वाला मेरे लिए, क्योंकि जैसे सेकंड T20 में 100 विकेट हुए एंड फोर्थ T20 में 100 मैचेस हो रही है, सो यू नो मेरे लिए

0: स्पेशल डे एंड मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट को।
1: एक ऐसा ही स्पेशल डे कल भी इंतजार कर रहा है जहां महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें एकमात्र टेस्ट मैच के लिए ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगी। 140 साल पहले इस मैदान ने पहले पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच की मेजबानी की थी और अब यह मैदान 140 साल के बाद पहली बार महिला टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल के क्षेत्र में एक दूसरे के अहम सहयोगी हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेलों के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ है।
2: भारत के एथलीट, भारत की टीम बेटर से बेस्ट होती जा रही है, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने भारत में खेलों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
2: खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये अभियान पूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है।
1: तो खेल हर क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बैठक के बाद श्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की तुलना क्रिकेट के खेल से की और श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों की मेजबानी करेंगे।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है, पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
1: तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक शानदार पार्ट कहा जा सकता है इसको। और इसी कड़ी में भारत में भी एक शानदार पहल की गई है। अगले दशक में भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाने के मकसद से खेल मंत्रालय ने आज ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी एनएसएफ को निर्देश दिया है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल खेले जाने हैं उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के या फिर सिलेक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर मापदंड हैं उनको समय रहते ही सार्वजनिक कर लिया जाए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं अश्वथ एस की, जिन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर रॉबिन राउंड में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। कन्याकुमारी के इस 17 वर्षीय लड़के ने अंतिम दौर में काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कनन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा

0: देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास।

0: राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
2: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की

0: घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices.